साहू रे अज्ञानी मरुस करे अपनी प्रतीत आप ही खूब है बहर उसका विश्वास न हुवे जिसकी वस्तु तसे आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसे चौकन करे निहार नान साहिब सदा दयाल अनक पात मैख हेत सरपर हुव जन नेत बिरख की छाया सो रंग लाप ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिस सो चलन हार लपट रहो ते अंधेदार बटाओ सो जो लापे नेहे ताकू हाथ न्यावे केहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप रलाई

अपने मना। जिन तेरी मन पन पनाए, उठत बैठत सत सह त्याहित सह त्याहे, जो एक लखै इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करे पन बो दान, मन आठ पैर कर का ध्यान। जे प्रसाद तू चार प्यारी, तिस प्रभु सा चितारी। सा

कहै जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पेख है बिस्मा जे प्रसाद बोले अम तरसना जे प्रसाद सुसै जे बसना जे प्रसाद हाथ कर चलहै जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावहे जे प्रसाद सुसै समावहे ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो गौर प्रसाद नानक मन जाग हो जे प्रसाद तू प्रकट संसार ते प्रभु को मूल न मनो बसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे।

जप सोए। आप जपाए जपै सो नाउ, आप गावाए सो हर गुण गा। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कवन विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व प्रदान पर तेरी मया, आपो कछु न कन्हू लिया। जित जित लाभ तित लगिर नाथ, नानक इन कै कछु न हासलोक। अगम अगाध पाप ब्रह्म सोए, जो जो कहै सो मुक्ता होए। सुन बीता नानक बिनवंता, साजना किए चर कताड़ पदे। साध के संग मुख उजल हो, सा समर सरी खोत।

साधु के समा प्रीत सात संग के सोनी बैर सात के संग न बिंगा पैर सात कर संग नाई को मंदा सात संग जाने परमानंद सात के संग नाई हो ताप सात कर संग तजे सव्याप आपे जाने सात पढ़ाई नानक सात प्रभु बने आई सात के संग न कभू तावे सात के संग सदा सुख पावे सात संग भक्त गुचर लह साधु के संग अजर सह सार के संग वसै तन उचै साधु के संग महर पहुचै सात के संग दृढ़ सब धर्म सात के संग कृपा ब्रह्म सात के संग पाए नाम तन नान साधु के कुर्बान सात के संग सब कुल उदार है सार संग साजन बीत कुटम रिश्तार है साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सब को बरसावे सात संग धर्म राय कर सेवा सात के संग सुबह सुरदेवा

सुनर साहब सार के सांग सुनो हर नाम सार संग हर के गुण का सार के सांग नाम मंत्र विसरा सार संग सर पनस्तरा सार के सांग लगे प्रमीठा साधु के संग कर का डीटा सार संग पे आज्ञाकारी सार संगत पे हमारी सार के सांग मिटे सब रोग नान सार पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने तेता बखियान है साध की उपमा ते कुंते दूर साध की उपमा नहीं भरपूर है।

परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश है।

उरतारे जुवंतर नाम सर्प मैं पेखे भगवान निमख निमुख ठाकर नमस्कारे नानक ओ अपरस सनिस्तारे अठपदे।

संहेत कर्ण सुने काव की निंदा सब ते जाने आपको मंदा गुर प्रसाद विख्या प्रहरे मन की बासना मन ते टराय इंद्री जित पंच दो तेरत नानकोट मदिक वैसा परस बैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न बिसर की माते हुए पिन कर्म करत होवे नेह कर्म तिस पैसनो कर निर्मल धर्म काहू फल की शानी बच है केवल पाद कीर्तन संग रच है मन तन अंतर सिंह गोपाल सभी उपर होवत कृपाल।

कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रा कई कोट नाम रस पीवै अमर पय सदा जीवै कई कोट नाम खुन खावे आत्म रस सो सह समावै अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण पवे कह दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारणे जर धर्म ही रसोय अट परे करण करावन करणे जोक जोत पावे सोई होक खिर में था प्यो था पनहारा अंत नहीं किरपारा बारा हुक्मे तार अतार हवे हुक्मे हुक्मे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे उचने विहार हुक्मे अनकरंग प्रकार

कोह मानुख ते क्या हुए आपे जोत पाए सोई करा पे इस कह हाथ हुए ता सब चले जोत पाए सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचाय जे जानते अपने आप बचाए पर मैं फूला दरस्ता विन कमाए चार कुंठ पर आवे कर कृपा से अपनी भगते नानक ते जन्ना मिला अखन मैं नीर कीट को राज पा ब्रह्म कृप नवा जाका दृष्ट कछु न आवे तेसे तत्काल दैद पटाए जाको अपनी करे बख्शीस ता का लेखा न कने जगदीश है।

जब न कोई कभू साध संगत इह पावे उस स्थान ते बहु न आवे। अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम तेक रंग सदा बसे पा ब्रह्म के संग। जो जल में जल आए खटाना तो ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कृपा सलोक। सुखी बसै मस्कीनिया अपन वार तदे बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ करे अटपदे जिसके अंतर राजपमान सो नरक पाती। हो स्वान जो जाने मैं चूर बंत सो होत बेटा का जानते।

थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर परिवतार अनक जतन करया तुनि द्रपय हतर के कोका से गवै आपस को जो पला कुहावै तिसे पलाई निटने आवे सब किरें जा कमन होए को ना ताकि निम्बर सोए जब लग जाने मुक्ति खुश होए तब को सुख नाई कोए जपे जाने में अखिर करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को प्यारी मीत तब लग निश्चल नाई चीत जब लग मोह मगन समाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस घटेला कूट तावै तृप्त न आवै मै पाछे पावे भू विख्या के करै न तृप्तावे खप खमरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सरस कोई वटभागी किसै प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदस्ता नान करजा करण करावन करने हा इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुई आपे आपे आप रसोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हु के संग बुझै देखै करे बबेक आपे कापे अनेक मरै न बिनसिया बिन जाय नान सदी रिया समाय आप उपदेश समझे आपे आपे रचिया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब काश उसका करने हार उसते पैन कह हो किशोय थान थरंतरे का सोए अपने चारते आप करने हार कौत करे रंगे पार मन में आप मन अपने माय नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रसामी गौर प्रसाद कने बखियानी सच सच सस कीना कोट मुदै कन बिरले चीना भला भला भला तै रूप असुंदर पार अनूप

सेठ अपियासुर में आपन कजुगत रच थाप उथाप अबनासी नायक खंड धारण तारिहो प्रमंड अलाख्य पे पुर प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसुभवंत सब संसार दुरे तन मंत प्रके सेव सरुदारण प्रके सेव तुख वसारण आपे मेले कृपार गुर का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ पागे नाम जात पाए विश्राम नान तन पुरख उत्तम करमान जो केश करे सो प्रभु के रान सदा सदा बसे अर संग सहज सुपाए होवे सो होए करणे हर पछाणे सोए प्रभु का किया जन मिटत का न जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजाय तस्माय समाय वे सुख निदान उन्हों बने आए आप सुको आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सरोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन हा जाके सिमण उदरी है नानक तिस पर हाठ पदे टूटी गांडन हर गपार सब्जियां पे प्रतपार सर की चिंता जिसमन माय तस्ते बिरथा कोई नाय रे मन मेरे सदा हर चाप अबनासी प्रया पे आप आपन किया कछु न होए जिसो प्राणी नो चै कोय तस बैन नाही तेरा कछ काम गत नानक चापे करना रूप मंतो नाही मोह है प्रभु की जोत सर घट सो है धनवंता होए क्या को गर्प है जन सबके तिसका दिया दर्प है अत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे जे को होए बह दतार तिस दिन हर जाने कपार जिसको प्रसाद टूटे हो रोक नान सूजन सदा अरोग ज्यो मंदर को थामे थमन तो गुर का शाद मने अस्थमन जो पखार नाव चरत रह प्राणी गुर चरण लख्त निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगाश गुरदर्शन देख मन होए पिकार जो महा ध्यान में मार्ग पावे तो साधु समिर जो प्रटावे

ताको बिन लागे कोई जा कर दै बसे हर सोए कर ताते ठंडा हर ना सिमर सिमर सदा सिमर सिमर सदा सो पा पो बिन सह पूर्ण होया भगत पाया तुम प्रकार तित कर जाय बसे बनासी को नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा वागन मिटाय प्रसेव आप त्याग सन गुरुदेव यो रतन जन का हुए उदार हर सिमर प्राण उदार अनक उपाव न छुटन हार सिमर साथ पे विचारे हर के पाद करो मन लाए मन बंचत नान फल पाए संग न चारस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना स्वतमीत कुटाम्बर बनता इनते कह हो तम कम सुना था राजनामा विस्तार इनते कह हो कौन छुटकार।

ऐश पुनी सरदा सा पूरी राफ रहिया सत्संग हजूरी जिसका साथ इंडिया मिलाए नानक भगती नाम समाए।

गढ़ गुरपुर तत् बुजा प्रभ अपना नान जनत्या साजन संत करो काम आंत्या जपुर नाम सिमर सिमर सिमर सो पावो आप जपो राना जपाव भगत पाए तरी संसार बिन पाती तन हो छी सार सर्व कल्याण सुख निध नाम बुढ़ चार पाए सराम साधु का उतनास नानक ना जपो गुणता सुपजी प्रीत प्रेम राचा मन तन अंतरे स्वाव नेत्रोपेख दर सुखोय मन बिकसे सार चरण तोय भगत जना के मंत रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लिया ता कि उपा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु शन दीन दयाल भगत वश सदा कृपाल

माल जब अपनी सुबह अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सतपाए जय सब कला पेपर बीन तब बेख तेव का कुतीन जब अपने आप आप तारे तो सगन अप सगन का विचार जे अपन ऊच अपने अपने रात कौन ठाकर कौन कहिए तेरा बिस्मन बिस्म रे बिस्मा नानक अपनी गजा नुआ जय छल छेद भेस माया उहा किसे ब्यात माया आपस को आपे आदेश ते गुण का नाई प्रवेश जह एक एक एक भुवंता ते कौन अचिंत किस रागे चिंता जे अपने आप पतियारा ते कौन कथे कौन सुने हारा बो बेअंत उचते उचा नानक आपस को आपे पहुचा।

का जी जंत के ठाकुरा आपे बरतन हार नानक को पसरिया दूजा कै दृष्टार अर्पति आप कथिया सुने हार आपे का विस्तार जस भाई तन से टोपाए अपने भाणे लय समाय तुम ते पर नहीं किश होए अपन सो सब जात परोए जाको प्रभ जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए

ते सजब कांकु जाय सब श्रेय कंदनजन राय जी के जोगत जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत पार नानकता सदा बरहार पूरन पूर है दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जा मीरो ब्याप प्रत पाले जीअन भांत जो जो रचयो सुत सहत्यात जिस पावे तिस लय मिलाए जिस पावे तिस लय मिलाए ना भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तस्की आसन बरते जाय सेवको सेवा बनयाई हुकम बूझ परम पर पाए

सुन उपदेह हृदय बसा मन छे नन फल पाव हालत परत दुइलिउ सवा राम नामे अंतर उतार पूरे गुर की पूरी देखिया जिसमन बसै तसार परिखिया मंत्र नाम जपो लव लाए दुख दर्द मनते पूजाए।

तैते दूर कांकु जाए उपरे राखन हार ते आए निरपो जपै सर्प मिटाए प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभु राखत सुनाई दुख नाम जपत मन हो सुख चिंता जाय मिटे अहंकार ते चन को कोई न पहुंच रहार।

ऊचा सगल समगरी तुमरै सूतर तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम्हें जाने नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती समर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्चन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनाओ निधावे ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चड़ियारियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी के सांस वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित्यावे चित्यावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देख देख फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल। धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मादा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ देश दा सहाई दा तर जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माण। निताणिया दे ताण नियोटिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमला पास। अरदास बेनती चौधड़ी प्रार्थना है पातशाह दर कर दे प्रीतवान भाई हरबंस सिंह बीबी हरप्रीत कौर साल परिवार वालों अपनी पोती। भाई अजमेर सिंह बीबी बलदीश कौर कालों परिवार वालों अपनी दोती। भाई मैथ्यू सिंह अते बीबी अमनप्रीत कौर साल परिवार वालों अपनी बेटी। बच्ची अथीना कौर साल दे पहले जन्मदिन नूं मुख रखदियां परिवार वालों शुकराना करदियां संध्या समय नूं मुख रखदियां। सोदा रहरा साहब जी की पावन बाणी के जाप उपरंत श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए सन। आप जी की महान कृपा हुई। आनंद साहिब छे पौड़ियां दी अरदास इन्ने अरसे विच होईयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा अगां तों समत बख्शिश करनी। समूह साल परिवार कालों परिवार दे सिर ते अते बच्ची अथीना कौर साल दे सिर ते मेहरा भरिया हथ रखना। दुखां कलेशां दरिद्रां विघनां दे नाश सुखां दे प्रकाश चढ़दियां कला दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां देसां परदेसां विच विचरदियां बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखणा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां। बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना इन्हां समयां नूं मुख रखदियां सेवकां वल्लों। आप जी नूं सुंदर पोशाक भेट कीते गए। आप जी ने अंगीकार कीते ने पवित्र हजूरी दे अंदर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शिश करने कृपा करो। पावन हुक्म दी दात बख्श के निहाल करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेत आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो
ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: चरण गहों बको शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर कोई जान, हर स्यों देवै जोर। चरण गहों बको शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर रहाओ। मान तान निर्मल करत के आरो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस में मगन होत कृपा ते, महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवो तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवा तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जनों, वडभागे हां जिथे आप जीआं ने संध्या समय नूं मुख रखदे हां। सोहदा रहिरा साहिब जी दी पावन बाणी दे पाठ सरवण कीते ने। सेवक परिवार, साल परिवार ते कालों परिवार वालों बची अथीना कौर साल दे पहले जन्म दिन नूं मुख रखदे हां। श्री सुखमणी साहिब जी दी पावन बाणी दे पाठ आरंभ करवाए गए सन। अकाल पुरख वाहगुरु जी की अपार बख्शिश हुई है। निर्विघ्नता सहित समाप्ति उपरंत परिवार की, बच्चे की, चढ़दी कला की अरदास और सतगुरु ने इस मौके पर जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने सरवण किए हैं। साल परिवार अगे बेनती है जो बच्ची अथीना कौर दरबार हाल के अंदर मौजूद है, बच्चे स्टेज पर लेके आने की कृपालता करनी, बच्चे सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया जाएगा। परिवार वालों आईया हुई समूह संगतों का तय दिल तो धन्यवाद है, जिन्होंने परिवार के सदे पत्र से पहुँच के परिवार का माण वधाया है। आई हुई समूह संगत वास्ते सेवक परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए ने। आप संगत ने गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। गुरद्वारा साहब विखे गुलजार ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों, नगर गहौर दियां संगतां वल्लों ते नगर छापा दियां संगतां वल्लों तीन श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ ने, जिन्हां दे भोग पल के सवेरे 9:30 बजे पैणगे। उपरंत हफ्तावरी दीवान सजणगे। परिवारां वल्लों ते नगर निवासियां वल्लों बेनती आप जी ने दर्शन देण दी कृपालता करनी जी। समां है गुरबाणी शब्द कीर्तन दा। सेवा निभाउणगे सतकारयोग भाई गुरदयाल सिंह जी खडूर साहिब वाले। आओ तिना दे जथे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए। भुला चुकां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। वाहिगुरु जी, फरीदा मौते दा बन्ना इमें दिसै।

तुम कोई न जान तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो।

सुता क्या करह जग रुए पे दुखा झका बसा गुर मह सो कौ सुबह सुख सुखा कबीर सुता क्या करह

कहो जाम ना करे तिसकार, जिन एह जमुआ सिरजिया सो जपिया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया भंवर पए सब दास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की

एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावा नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए, पाछा परी बहीर। एक आव काट काटी राम की, ते चढ़ रहे कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चालत कुल की कान। तब

कबीर सूरज चांद का उदा भाई सब दे गुरु गोबिंद के बिन मिले पालट पई सब खे।

कबीर चोट सहेली सेल की लागत ले असास, चोट सहारा शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई न बैरा होए,

कर सो सुखिया संसार इत उत कतह न डोलई जिस राख सृजनहार कबीर कानी पीड़ते सत

जो मेरे चेतना हुए। महला तीजा चिंता पे आप कराए सी, अचिंत पे आपे दे। नानक सो सलाहिया जे सब

अजन सुती कंतस्यो अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछा डोहागणी तुम क्यों रैण विहाय साहुर ढोई नाल है पेय नाही थाओ पेर वातड़ी ना पुछई तन सुहागण नाओ।

सुख गए कुमलाए, फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह विछावन लेफ। यो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक रादी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। फरीदा दर दरवाजा जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल, एहो निदोसा मारिया हम दोषां दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मारिया पहरी लहस जाए, सुहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रहन विहाय। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे,

रखसी जियो शरीरो लेह। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वण कै सर लोहार। फरीदा हों लोड़ी सो अपना तू लोड़ा अंगयार।

जो सिर साई ना निवै सो सिर कपि उतार। जो सिर साई ना निवै सो सिर की जय काय। कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदै थाए।

फरीदा अंदरी आवे कन्ने बगला बैठा केल करे केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए तिस रब दे केला विसरिया जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब किया साढ़े त्रैमण देहुरी चलै पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच वात्या सूनी बन।

करत्या कन्ना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना। देहना गहना नहना नीता माया मत कहा लो गारो छत्र ना पत्र ना चौर ना चावर बहती जात हृदय ना विचारो। रथ ना असव ना गज सिंघासन छिनमै त्यागत नांग सिदारो सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना कौ दृष्ट निहारो। कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र ना पुत्र कलतर साजन साख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा करतारो। प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू तेले रखी निरारी। तावन पावन कूरक मावन ए बिद करत औद तन जारी। कर्म धर्म संजम सोच निमा चंचल संग सगल बिदहारी। पशु पंखी बिरख अस्थावर भूबिद जोन प्रमेय अत भारी। खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरण गगन आवत फुण धावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत। प्रे प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जनता कै दर्स समावत। तिसै त्याग आन को जाचै मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड़ सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत। माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयो है। इता गब आकाश न मावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है।

ग्रस्यो जमदूतन दन मृत मर्यो है अनिक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत उदरा से नानक कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्ब रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ धारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समर्था नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंदेओ ना जात बिदे मन दर्श मग पावक जर्यो ना जात रहे जन तूर लग नीर न साकस बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोछ दै हर नाम खग उद्दम कर लागे बो भाती बिचरै अनिक शास्त्र बो खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बो भ्रमते सूखम देह बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका यनिक भांत थाटे कर थटुआ सवैये महल्ले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सिरे गावे गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सो जस गावो गुर नानक राज जोग जिन मान्यो गावै जन काद जुगत जोगेसर हर रस पूर्ण सर्ब कला गावै सनकाद साधु सिदादक मुन जन गावे अचल चला गावै गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जान्यो कब कल सो जस गावो गुर नानक राज जोग जिन मान्यो गावै कपलाद आदि जोगेसर अपरंपर अवतार वरो गावै जमदगन परसरामेसर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जान्यो कब कल सो जस गावो गुर नानक राज जोग जिन मान्यो गावै गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा गावै गुण सेस सैस जे बारस आदि अंतले वलाग तुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर दंतर सृष्ट सगली उदरीर नाम ले तरयो निरंतर गुण गावै सनकाद आदि जनकाद जुगालग तन तन गुर तन जन्म सकियत पलो जग पाताल पुरी जाकार तुन कब जन कल वखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माण्यो सतजुग तै माण्यो छल्यो बलबावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो युग रसैन कौ राज अपै भगतां जन दियो कलजुग प्रमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबिचल अटल आदि पुरख फरमायो गुण गावै रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नाम भगत नामा भगत कबीर सदा गावै समलोचन भगत
भगत बेण गुण रवै सहज आत्म रंग माणै जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाणै सुख दियो परीक्षित गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गावै पायाल भगत नागाद पयंगम महादियो गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सोजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो

सदा गुरसंग्रहंतो दूरबा परूरो वंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर घट घट सहज समायो। सवैये महले दूजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम तरियो जन हथो ता तरियो मस्तक हथ सहज म्यो उठो छज सुर नर गण मुन बोहिया गाज मार्यो कंट काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक कार राख ले समझ जग जीतो गुरद्वार खेलै समत सार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लैना जगत गुर प्रसमुरार जाके दृष्टि अमृत धार कालक खाने उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवै शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर पावे उतार किए निरपार सतसंगत सहज सार जागीले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार तै तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सो जन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत्र जल पदम विचार कल्पतर रोग बिदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिबिद तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मंजार लैना जगत्र गुर प्रस मुरार तै ता हदरथ पायो मान सेविया गुर प्रवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा वंत गयान जानी अकल गत गुर प्रवान जाके दृष्टि अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पैर सील सना सख्त बिदार कौ कीरत कल सहार सप्त दीप मंजार लहना जगत्र गुर प्रस मुरार दृष्ट तरत तम हरण दहन अगपा प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रत संग्रहण कैन मृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत लाग्या सो पैतर गुर जगत फिरन से अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकल लिव रह करण सो इच्छा चारा द्रुम सपूर जो निवै खिवै कस बिमल बिचारा यह तत् जानयो सर्बगत लख बिडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कलबाणी गुरु गम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रहज लयो हर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लैने पयो मन विसास पायो गहर गौ हदरत दियो गरल नास तन नठयो अमयो अंतरगत पियो रिद विगास जाग्यो अलख कल त्रिज गंधर सतगुरु सहज समाद सतगुरु सहज समाद रव्यो सामान निरंतर यो दारो चित दारद हरण पिखंता कलमल तरसन सदरंग सहज कल उचरै जस जंपो लहने रसन नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरा बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसे गुरु कै अड़सठ मज्जन होवे सच तीरथ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोए
ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ, ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਸੱਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰਾ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਰਦਰੀਆਉ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ।

जन्म मरण दुख जाए, सवैये महले तीजे के एक ओंकार। सत गुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा, जाका एक नाम अचल संसारे। जिन भगत भवजल तारे, सिमरो सोई नाम प्रधान। तित नाम रसक नानक लहना, थे थप्यो जिन सरब सिद्धि। कवजन कल सबुद्धि, कीरत जन अमरदास बिस्तरिया। कीरत रव किरण प्रगट संसारा, साख तरोवर मवल सरा। उत्तर दखण पूब अर पश्चिम, जय जय कारज पंथ नरा। हर नाम रसन गुरमुख बरदायो, उल्ट गंग पश्चिम धरिया। सोई नाम अचल भगता पवतारण, अमरदास गुर को फुरिया। सिमरै सोई नाम जाख अर किन्नर, साधक सिद्ध समाध हरा। सिमरै नखियत्र अवर त्रु मंडल, नारदाद प्रहलाद वरा।

और जग में परवर यो निरंकार आकार ज्योत जगमंडल करो जाकाता परपूर शब्द दीपक दीपायो जय सिखा संगरियो तत् हर चरण मिलायो।

जप तप सत संतोख पेख दर्शन गुर सिखा शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर के लिखा। भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतारै गुरु गौ हर दरियाओ पलक अडपंता तारै। नानक कुल निमल अवतरयो गुण करता रै उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर परै।

संगत हो तको, तेरा हुक्म पवै निशान, तो करो साहब की सेवा। जब गुरु देखै शुभ दिष्ट, नाम करता मुख मेवा।

जिव तू रखै तिव रहो भिखे के। गुर ज्ञान अर ध्यान तत्स्यों तत् मिलावै, सच सच जानिए इक चित लिव लावै। काम क्रोध वस करै पवन उडंत न धावै, निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ बिचार पावै। कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किस कियो, गुर मिलियो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो।

न परचो लायो, कहते आ कहते सुनी, रहत को कुसी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिनके गुण हो क्या कहो। गुरदई मिलायो पिखिया, जिव तू रखै तिवर हो। पहर समाद सुनाह ज्ञान है आसन चढ़ियो, त्रम तनख कर गहियो, भगत सीला सर लड़ियो। पै नृपो हर अटल, मन शब्द गुरने जा गड़ियो। काम क्रोध लोभ मोह अपत, पंच दूत बिखंडियो। भलो पुहाल ते ज्योतना, नृपत नाथ नानक बर गुर अमरदास। सच सल भण तै दल जितो, इव युद्ध कर। कनहर बूंद बसोरो मावल, कुसम बसंत गिनंत न आवै। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै।

प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह मैं तारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजूनी संपवयो जगत गुरबचन तरायो अभिगत या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तैं जगते उदाहरण पायो जगते उदाहरण नव निदान भगता पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिशकी बिखै निवारण सहज तुरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइय तन ते जन बड़ पागे ते मुक्ते भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै तैं शब्द निशान बजायो सेज सदा सहज छावान संतोख सराय सदा सील सन्ना सोहै गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरै तो सहज सरोवर बास गुरु जन को सो प्रसन्न नाम हरदय निवासै जिन को गुरु सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नासै गुरु जन को सो प्रसन्न मान अभिमान निवारै जिन को गुरु सो प्रसन्न शब्द लग भव जल तारै परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुगत सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अकाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे यो राज जोग गुरु रामदास तुमहू रस जाने जिनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै जिनक राज गुरु रामदास तुझ ही बणिआवै सतगुर नाम एकलिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जीओ तारण तरण खिन मात्र जा को दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जीओ जीअन समन दाता अगम ज्ञान बिख्या ताए नस्त्यान तावै पलक न सोवै जीओ जा को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जीओ सतगुर नाम एकलिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जीओ धर्म कर्म पूरा सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एकलिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकथ कथन हार तुझै बुझाई है परम पुले संसार छूटो जुनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत ते आई है मन प्राणी मुग्ध विचार एन सजाप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है हों बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देयो कवन सेवा श्रेयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच क्रम जान नत दूजा ना मान नाम सु अपार सार दीनो गुर रिद धार नल कव पार स्पर्श कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हों बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दीयन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो नंद तारण मनुख जन कियो प्रगास गुरु अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कलजुग राखी पत अकन देखत गत चरण कवल जास सब दम्मा न्यो मन तभी पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दीयन गुरु रामदास राड
ਜਿਸੈ ਧਾਰਿਓ ਧਰਤ

प्रसन्न परम पवित्र गते जीतै जम लोक पतित जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मन बंचै जा की शरणंग। सतगुर गुर सेव लख गत जाकी श्री राम दास तारण तरणंग। संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया। जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई। तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई। अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया।

तारण तरणं प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पे जस जन कै एक पढ़ै सुनै गावै प्रभाते करै स्नान इसनान करै प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रहया पूर्व बिद वर्णन सत गुर गुर सेव लख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण जिनों बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरियो समुद्र रुद्र एक खिन में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मच्चा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कहत मज सोद जिस दही पात खाहे जियो देख रूप अत अनूप मोह माह मग पई किंकनी शब्द चणत कर खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै इस बम ज्ञान त्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास याद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हेत पेख तरियो हरनाक्ष हरियो नाख बेदार जियो संख चकर गदा पद्म आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लख्या कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीर बसन कुंद दसन प्रिया सहित कंठ माल मुक्त शीस मोर पंख चाहे जियो बे वजीर बड़े तीर तरम अंग लख गम खेल किया अपना चाहे जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहया समाए सुता सिद्ध रूप धरियो शहन कै शाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बले चलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नह कलंक बजी डंक चढ़ दल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल भवन कुशल करण सर्वभूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम माछ कछ हो ब्राह जमुना कै कूल खेल खेलियो

मोह मल बिवस कियो, काम गै किस पछाड़ो। क्रोध खंड ब्रचंड लोभ अपमान स्यो झाड़ो। जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सो मन्नै। पव सागर बंदियो, सिख तारे सो प्रसन्नै। सिर आतपत सचो तखत, जोग भोग संजोत बल। गुर रामदास सच सल, भण तू अटल राज पग दल। तू सतगुर चौजुगी, आपे आपे परमेश्वर। सुर नर साधिक सिद्ध सिख, सेवंत तुरा तुर। आद जुगाद अनाद, कला धारी त्रेलो। अगम निगम उदरण, जरा जमया रोह। गुरु अमरदास थिरथ पियो, प्रगामी तारण तरण। अग अंतक बदै ना सल, कव गुरु रामदास तेरी शरण। सवैये महले पंजवें के, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सिमरंग सोई पुरख अचल बिनासी, जे सिमरत दुरमत मलनासी। सतगुर चरण कवल रिद धारं, गुर अर्जन गुण सहज विचारंग। गुर रामदास कर कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो। भगत जोग को जैतवार, हर जन क्यों पायो। शब्द गुरु प्रकाश्यो, हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पायो। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास, भगत उतरे आयो। मड़पागी उन मान्यो, रिद शब्द बसायो। मन मानक संतोखियो, गुरु नाम दृढ़ायो। अगम अंगोचर पार ब्रह्म, सतगुर दरसायो। गुर अर्जन घर गुर रामदास, अन पौ ठहरायो। जनक राज बरताया, सतजुग अलीना। गुर शब्दे मन मान्या, पति जपतीना।

खेल गुड़ो कियो हर राय, संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो। आजोनी संपवेयो सो जस कल कवीन बखाण्यो।

गुरु अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चाल नहीं नेजा नाम निशान सदगुर शब्द सुवार्यो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोए था तो सदगुर संग हेत नाम लाग जग उदर्यो जगत उदारण नाम सदगुर तुठ पायो अब नाहीं अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुर रामें दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमरा अमृत बयन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नयन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट जोत जग मगै तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बितरो तेजन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रयन बास जाको हित नाम स्यों परम तीत परमेश्वर कै रंग रंगो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों।

मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारण को, गुर जोत अर्जन माहे तरी, जग और न या है महातम मैं, अवतार उजागर आन की उतन के, दुख कोटक दूर गए, मथुरा जन अमृत नाम पियो, हे पद्धत ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद ना जान बियो, प्रताक्ष हृदय गुर अर्जन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग लीला हृदय, तब लो प्रमते फिरते बोतायो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो, जपयो जने।

देशम सरसोई तरण गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रयो पर पान मथुरा कश भेद नहीं गुरु अर्जन बरताख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सबना वै नित पुराण बाची है बेद ब्रह्मा मुख गावै अजय

गुरमुख छुटिए हर प्रीतम सियो संग। भाग मरै मन मारिए जो सतगुर दीख्या होए। आप पछाणै हर मिलै बहुड़ न मरण ना होए। कीचड़ हाथ ना बूढ़ई का नदर निहाल। नानक गुरमुखी बरे गुर सरवर सच्ची पा।

आए सरवर हंस न जानिया काग कुपंखी संग साकत स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सबाजा कार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावण नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे काफल क्या गणी जाहर भगत ना पाओ पैदा खांदा बाद है जामन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सा लाहे तू होर हो मैं आवो जाओ हैण विरले नाही घणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान झूठै सेती जो मरै लगी सा परवान जिसनो लाए तिस लगै लगी ता परवान परम पै काम ना निकलै लाया तिन सुजान भांडा तू वै कौन जे कच्चा सजया ता तू पंजर लाए कूड़ा पाजया भांडा आण गिरास जां तिस भावसी परम जोत जा गाए वाजा वावसी मनो जिन दे कूप कहिया बिरद ना जाननी मन अंधै ऊंधै कवल दिसन खरे करूप एक कह जानन कहिया बुझन ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो न लखंत नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदा ब्रह्म जप तप संजम कमावै कर्म सील संतोख का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाण बीजै दान सो खत्री दुर्गा परवान लभ लोभ जे कूड़ कमावै अपना कीता आपे पावै तन नत पाए तनूर ज्यों बालन हड़ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री समाल सबनी कट्टी शाह वसै शाह बिन घट ना कोए नानक ते सोहागनी जना गुरमुख प्रगट होए जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरी जै सिर दी जै कान ना की जै नाल की राड़ा दोस्ती कूड़ै कूड़ी पाए मरण ना जापे मुलिया आवै कितै थाए ज्ञान हीन अज्ञान पूजा अंध वर्तावा पाओ दूजा गुरबिन ज्ञान त्रम बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो न बाकी माणू कल्लै उठी चलै साध नाही इवे ही गल्लै राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधिकार बंतर की सैना सेवियै मन तन जो जय पार सीता लै गया दासरो लक्ष्मण मोह सराप नानक करता करण हार कर वेखै था पि उथाप मन मैं चूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग हनवंतर आराध्या आया कर संजोग भूला दैतना समझई तिन प्रभ किए काम नानक विपर वाह सो किरत न मिटई राम लाहौर सहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा लाहौर सहर अमृतसर सिफती दा घर महला पहला

जो लेवे सो देवे नाहीं खट्टे दम सहमी। पबर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग। जाना पानी नाल हां जैसे ती मेरा संग जित डिठै तन परफड़ै चिड़ै चवगण वन। रज ना कोई जीवया पहुँच न चलया कोई ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए। सरफै सरफै सदा सदा एवै गई विहाए नानक किसनों आखी है बिन पुछया ही लै जाए।

प्रगट होए। दुख विसारण शब्द है जे मन वसाए कोए। गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हों हों करते खप मुए, खूहण लाख असंख। सतगुर मिले सोबरे, सच शब्द अलंख। जिना सतगुर एक मन सेविया, तिन जन लागो पाए। गुर शब्दी हर मन वसै, माया की भुख जाए।

माया मोह जग परमिया कर मुसै खबर ना होए। काम क्रोध मन हिरलया मनमुख अंधा लोए।

नानक सब कारण करता करै वेखै सृजनहार। गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। तिथै ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथै आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए। एक उपजै एक बिनस जाहे हुक्म आवै जाए। जम्मण मरण ना चुकई रंग लगा दूजै पाए। बंधन बंद पवाईयन करना कछु ना जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलया आए। सतगुर मिले

0: माया प्रियंगम सर्पह जग घेरिया बिख माए, बिख का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलया आए, मिल सतगुर निर्मल होया बिख हो मैं गया बिलाए। गुरमुखा के मुखी उजले हर दरगाह शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान है।
1: जन नानक सदा कुर्बान तेन, जो चल सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है। नित हिरदे हर लिवलाए, निर्वैरे नाल वरे वैर रचाएदा, अपने कर लुकी लाए। अंतर क्रोध अहंकार है, आनंदन जले सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल न ते भौक दे, वेखा दे दूजे पाए। बिख माया करण भरम दे, कर फिर कर कर पत गवाए। बेसवा केरे पूत ज्यो, पिता नाम दिस जाए। हर हर नाम न चेतनी, करते आप खोआए। हर गुरमुख कृपा धारियन, जन विछड़े आप मिलाए। जन नानक तिस बरिहारण, जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से उबरे, बिन नावे जमपुर जाहे। नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताए। चिंता तापत रह गए, ता मन पया आनंद, ता मन पया आनंद। गुर प्रसादी बूजिए, सा तन सुती निचिंद। जिन को पूर्व लिखिया तिना भेटिया गुर गोबिंद। नानक सहजे मिल रहे, हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना, गुर शब्दी विचार। सतगुर का पाणा मन लैन, हर नाम रखे और तार। एथे उथे मनियन, हर नाम लगे व्यापार। गुरमुख शब्द से जाप दे, तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच, अंतर परम प्यार। जम काल नेड़ न आवई, आप बख्से करतार। नानक नाम रते से तनवंत हैन, निर्धन होर संसार। जन की टेक हर नाम हर बिन, नावे ठवर न ठाओ। गुरमति नाम मन वसै, सहज सहज समाओ। बड़भागी नाम ध्याया, एन सलागा पाओ। जन नानक मंगे धूड़ तन, हो सद कुरबाने जाओ। लख चौरासी मेदनी, तिसना जल्दी करे पुकार। एहो मोह माया सब पसरिया, नाल चलन अंतिवार। बिन हर सात न आवई, किस आगे करी पुकार। वड़भागी सतगुर पाया, बूझया ब्रह्म विचार। तिस नागन सब बुझ गई, जन नानक हर उर तार। असी खते बहुत गमाव दे, अंत न पारा वार। हर कृपा करके बख्श लहो, हो पापी वड गुनहगार। हर ज्यो लेखे वार न आवई, तू बख्श मिला बनहार। गुर तुठे हर प्रभ मेलिया, सब किलख कट विकार। जिना हर हर नाम ते आया, जन नानक तन जयकार। विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पाए, जन मरण ने चल पाए गुरमुख नाम त्याए। गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन, नानक लाल मौल का गुरमुख खो जलहन। मनमुख नाम न चेत्यो तेग जीवन तेग वास, जिस

करवास मन मुखिया दुहागणी आपन जान मुयास। गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास। हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास। सतगुर सेवने अपना हो सद भले हरी तास। नानक तन मुखी उजले जन अंतर नाम परगास। शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई। भेख करे बहु कर्म भगुते पाए दूजे परश भगोई। नानक बिन सतगुर नाम न पाई जे सो लोचे कोई। हर का नाम

उर्वार न पार है अदभ चरह लवटाए जो तर लिखिया सुकमावना करना कछु न जाए गुरमती ज्ञान रतन मन वस सब देख्या ब्रह्म स्वपाए नानक सदगुर बोथ है बड़ भागी चढ़े ते पौजल पार लगाए बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मान वस सदा रहे और धार तिसना बूझे तिप्त होए हर के नाए प्यार नानक गुरमुख पाइय हरे अपने कृपा तार बिन शब्द जागत बार लिया कहना कछ न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए नानक करता सब कुछ जानदा जन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण देख माया मोन मिटही बिच हो मैं आवन जान सतगुर मिलिया मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान माया मोह बो चित वो आसा लोभ बिकार मन मुखिया शरणाथी है मर बिन सजाए खिनवार बड़ भाग होवे सतगुर मिले हो में तजे विकार हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुर भगत न हो वही नाम न लगे प्यार

कर्म करे, बाहर पखंड सब कर्म करे, मन हृदय हर लेवला। मन बाहर पखंड सब कर्म करे, मन हृदय कपट कमाए, खेत शरीर जो बीजिए, सो अंत खलो आए। नानकी प्रा बेनती हर पावे बख्श मिलाए, मन आवन जान ना सूजे दरबार। माया मोह पलटिया अंतर ज्ञान अगवार, तब नर सुता जागिया सिर डंड लगा व्यापार। गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार, नानक आप्यो धरे सब कुटुंब तरे परवार। शब्द मरे सोमु आ जापे गुर।

मनमुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए, नानक करता करे सोए। गुरमुख बूढ़े कदे नाही जन अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ध्यान, ओए सदा आनंद।

मनमुख मुए बेकार में मर जमे वारो वार जीवन आनो मिले सो जीव दे हर जग जीवन और धार नानक गुरमुख सोने ते सच्चे दरबार हर मंदिर हर साजिया हर बस जिस नाल गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदिर वास्ता नेक है नवनत नाम समाल तन भगवंती नानका

पाई तनको सद बल हारे जाओ से दाड़िया सजिया जे गुर गुर चरने लागन अनदन सेवन गोरे अपना अनदन अनदर हन नानक से मोह सोहणे सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोल सच कमाहे सच्चा शब्द मन बसया सतगुर माहे समाहे सच्ची राशी सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगाह बैसना सच्चे माहे समाहे नानक बण सतगुर सच न पाइए मन मुख भूल जाहे बावी हा प्रयो प्रयो करे जल नद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तस चूके सहज उपजे चूके कूक पुकार नानक गुरमुख शांत होए नाम रखो और ता

जल ही ते सब उपज बेल जल प्यास न जाए। नानक हर जल जन पिया तस भूख न लागे आए। बावी हा तू सहज बोल सत्य शब्द सुभाए। सब कुछ तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए। आप पछाण है प्रीतम मिले बूटा शैवर लाए। चिमचमे मर्द वरसदा दिसना पुख सब जाए। कूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए। नानक सुख

शब्द समाए पै का सहज सिगार करो साचर हो लाए नानक नामो मन बस हर दर गाल छाए बाबी हां सगली धरती जे फिरे उड चढ़े आकाश सतगुर मिलिया जल पाई है टूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब कुछ तिसके पास बैन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीचे अरदास नानक घट घट एको वर्तदा शब्द करे प्रगास नानक तिस बसंत है जय सतगुर सेव समाए हर बूठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरिया बल होए सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम न बिसरे जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वसिया मन सोए हर बूठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए वडले चालू चुलंबले नावड़ा लईए किस पन्नण करन समरथ है हर बूठे मन तन पर फड़े हर बूठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए वडले चाल चुलंबले नावड़ा लईए किस नाव लईए परमेसरे पन्नण करन समरथ हर हट पी तू तू करे बोले परिबाण साहब सदा हदूर है क्या उची करे पुकार जिन जग तो पाए हर रंग किया तिसे बिटो कुरबान आप।

दो, जिचर आप कर पाल। शब्द अखुट बाबा नानका, खाए घर चन माल, खांब वे कांदड़े जेला,

बोधा उपज बिन सनीत जग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतही मद माया के अंद कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम्बंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन, बिरता जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भज, रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं,

बिसरियो गोबिंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम, प्राणी राम न चेतै, मद माया कै अंद, कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे जम्बंद, सुख में बहु संगी पै, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर पाज मना, अंत सहाई होए, जन्म जन्म परमत फिरियो, मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर पाज मना, निरपै पावे बास, जतन बहुत मैं कर रेओ, मिट्यो न मन को मान,

तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरदा सब ही मान, करणो तो सो ना कियो, परयो लोभ कै बंद, नानक समय हो रम गयो,

करत पूरन होवे काम, झूठे मान कहाँ करे जग सुपने ज्यो जान। इन मैं कछ तेरो नहीं नानक के हो बखान, गर्व करत है देह को

स्वान तज तनहिं नेता नानक ए बिद हर पजो एक मन हो एक चित तीरथ बरत और दान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात ते ज्यों कूं चरेश नान।

बेद पाई कौन हर रस लीन निज कर देखे हो जगत में को काहू को नाय नानक तेरे हर भगत है तेरा को मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले ओ रे मीत कह नानक तेर ना रहे जो बालू की पीत

परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले शाड़ सगल जंजाल दोहेरा बाल छूट क्यों बंधन पर कछु न होते अपाय कौ नानक आबे ओट हर गज जो हो सहाय बल हो आ बंधन छूटे सब किस होते अपाय।

करहो गुर गोबिंद, कहो नानक है जगत में किन जपे ओ गुर मंत्र, राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोय, जैसे मरत संकट मिटा दर्श तुहारो हो, राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोय, जैसे मरत संकट मिटा

रागमाला राग एक संग पंज ब्रंगन संग लापे अठो नंदन प्रथम राग पैर होवे करही पंज राग नि संग उचारई प्रथम बैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन लेके गे पे बारी है पैरों की पंचो नारी पंच मर्द सा सुना वह बंगाल मद माधव गा वह लत बिलावल गावी अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र पैरव कह गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौश कला पै संग रागनी पंचों था पै गौण गरी और देव गंधारी गंधारी से होती उचारी त्रासरी है पांचों गाई मारा कौ साक संग लाई मारो मस्तंग में वारा प्रबल चन कौशक बारा खो खड़ो पौर नद गाये अष्ट माल कौ साक संग लाए पुंडायो हिंडोल पंजनार संग सुत उठे तान कलोहल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरसी लै पार जा संलाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्रम बे मंगलन सहाय सरसबान हो आए बनोदा गावे सर बसंत कुमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशेली पट मंजर ही टोटी कई अलाप का मोदी यो गुजरी ही संग दीपक के थाप कालंका कुंतले राम कमल को चंपक नाम गौराव कला कल्याण अष्ट पुत्र दीपक जाना सामे सिरिया वह गावे पांचो संग बरंगण लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसा वरी ते पासे सिन्वी अला पिहि श्री राग स्यों पांचो था पिहि सालु सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र सिर राग गोंड कौंब अमीरा खस मेघरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे सोट गोण मलारी तुनि पुन गावे आसा गुन गुने ऊंचे सुरसो पुन की नि मेघराग स्यो पांचो ची नि बैरा दर गई दृ के दारा जबली तड़ो जल तारा पुन गावे शंकर श्यामा मेघराग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नी तीस सब

तुमरि गत मैं तुम ही नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्यों ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत जी सहाय वार, श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं। प्रथम बगौती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठै सब दुह जाय। तेग बहादुर सिमरै करनौन दयावे ताय, सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, ओ सब थाई होई सहाय। दसों पातशाहियों की जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ, दीदार दा ध्यान तर खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहे गुरु। पंजां प्यारिया चौं साहिबजादियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख के अंडट कीता, तिन्हां गुरमां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सी दित्तै बांध बांध कटवाए, चरखणिया ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए, उबलदिया देगा विच उबाले गए खोपरिया लुहाइया, गुरद्वारिया दी सेवा संभाल ले कुरबानिया कीतिया, तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया, असहे ते कहिगा सहार दे सीधो इस किद केसा सवासा संग नभाई, धर्म निहारिया तिना समोह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहे थमरत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहिब सच्चे पातशाह गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सजे दीवाना दीआं हाजरियां भर रहे बहुत ही सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों बड़ी बख्शिश गुरदेव दी होई है अज वख-वख सेवक परिवारां वल्लों नगर निवासी इलाका निवासी संगतां वल्लों अते ट्रांसपोर्ट वाले वीरां वल्लों सतगुरु दी अमृतमई बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब करवाए गए सन जिन्हां दे भोग पए ने दीवान सज्जे ने तो आप जी ने पावन बाणी दे कीर्तन श्रवण कीते ने। मेरे तों पहलां 5 मिंट वीर ने बड़ियां जरूरी गल्लां आप जी दे नाल सांझियां कीतियां, शाबाशी देनी बनती है क्योंकि ये गल नूं एडमिट करना बहुत औखा हुंदा। दुनिया हमेशा अपनी चंगयाई नूं ते शरे बाजार एडमिट करती है पर अपनी बुरियाई नूं कोई भी जिहड़ा है वह शरे बाजार एडमिट नहीं करता, प्रवान नहीं करता। तुसीं 150 रुपया दान कीता होवे ते बंदा उहदा ढिंडोरा पिटदा, पर बंदे ने चोरी कीती होवे ते उहदा ढिंडोरा कदी भी नहीं पिटदा। तो सतगुरु कृपा करे जिथे इन्हां वीरां दे जीवन बदले ने तो जिहड़े साडे विचों साडे बच्चे धीआं पुत्तर कई वार असीं पर्दा पा दिंदे आ, मान लो हुण साडे बच्चे बारे गुआंढी ने आण के इह गल आखी वी तुहाडा बच्चा गलत संगत विच है ते असीं सोसाइटी दे बोझ थले इन्ना दबे हुंदे आ वी सानूं उस गल नूं वेरीफाई करन दी बजाए असीं कई वार ये कहिंदे आ वी इह साडे नाल कोई ईरखा करदे ने कोई नफरत करदे ने। नहीं नहीं सानूं प्रवान करना चाहीदा। मुड़ के बाद विच इत्थे मावां रोंदियां वेखियां जिन्हां ने सही समय दे उत्ते कोई जिहड़ा सख्त फैसला है वह नहीं लिया। बाणी ने सानू समझाया है कि अगों दे जे चेतीए तां कायत मिले सजाए। तो आओ साध संगत शब्द की विचार आपां करनी है। वैसे आनंद आ रहा सी वीर गल्लां बातां दस रहा सी, होर भी 5-7 मिनट ला लेंदे तो चलो कोई गल नहीं सी, पर गुरु घर के एक बने प्रोग्राम मुताबक आपां हुण शब्द की विचार करनी है। विचारां नूं रमण तो पहला फतेह की सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा राग विच सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहब जी का एक शब्द मैं आप जी के नाल सांझा कीता है। इस समुचे शब्द विच धन गुरु नानक साहब महाराज ने आपां सारिआं नूं इस्तरी दे रूप दे विच चितवया है, औरत दे रूप दे विच। ते जिहड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है उन्हूं मर्द दे रूप दे विच पति दे रूप दे विच साडे सामने रखिया है। जदों तो आपां महाराज की बाणी नूं पढ़दे हां ते सतगुरु फरमाउंदे ने इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सबाई, भी इस संसार दे विच इस जगत विच पति इको ही है। बाकी जिन्ना यह जगत है ओदियां औरतां ने ओदियां तीवियां ने, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता समाज में एक बड़ा अहम स्थान रखता। गृहस्थी जिहड़ा जीवन है ना

गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पो करिया। उडे उडिया वैसे कुसा तिस पाछे बचरे।